Anche il babbo ha di carico di Coffee Crush. Carico ma a papalo poi cosa ha con la Nepal Rastra Bank le tocche co e con la bazar poi te sic bini mai d'arco. US dollar 1 को खरीदार 152 रुपया 60 पैसा बिक्रीदार 153 रुपया 20 पैसा यूरो 1 को खरीदार 174 रुपया 7 पैसा बिक्रीदार 174 रुपया 76 पैसा पाउंड स्टर्लिंग 1 को खरीदार 203 रुपया 65 पैसा बिक्रीदार 204 रुपया 45 पैसा स्विस फ्रैंक 1 को खरीदार 188 रुपया 85 पैसा बिक्रीदार 189 रुपया 59 पैसा ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 को खरीदार 105 रुपया 60 पैसा बिक्रीदार 106 रुपया 1 पैसा कनेडियन डॉलर 1 को खरीदार 107 रुपया 78 पैसा बिक्रीदार 108 रुपया 20 पैसा सिंगापुर डॉलर 1 को खरीदार 117 रुपया 92 पैसा बिक्रीदार 118 रुपया 39 पैसा जापानीज यन 10 को खरीदार 9 रुपया 39 पैसा बिक्रीदार 9 रुपया 43 पैसा चाइनीज युआन 1 को खरीदार 22 रुपया 44 पैसा बिक्रीदार 22 रुपया 53 पैसा साउदी अरेबियन रियाल 1 को खरीदार 40 रुपया 64 पैसा बिक्रीदार 40 रुपया 80 पैसा कटारी रियाल 1 को खरीदार 41 रुपया 86 पैसा बिक्रीदार 42 रुपया 2 पैसा थाई भाट 1 को खरीदार 4 रुपया 56 पैसा बिक्रीदार 4 रुपया 58 पैसा यूएई डिरहाम 1 को खरीदार 41 रुपया 55 पैसा बिक्रीदार 41 रुपया 71 पैसा मलेशियन रिंगित 1 को खरीदार 37 रुपया 43 पैसा बिक्रीदार 37 रुपया 58 पैसा साउथ कोरियन वान 100 को खरीदार 10 रुपया 11 पैसा बिक्रीदार 10 रुपया 15 पैसा स्वीडिश क्रोनर 1 को खरीदार 15 रुपया 72 पैसा बिक्रीदार 15 रुपया 79 पैसा डाइनिश क्रोनर 1 को खरीदार 23 रुपया 29 पैसा बिक्रीदार 23 रुपया 38 पैसा हङकङ डलर 1 को खरीदार 19 रुपया 47 पैसा बिक्रीदार 19 रुपया 54 पैसा कुवैती दिनार 1 को खरीदार 495 रुपया 86 पैसा बिक्रीदार 497 रुपया 81 पैसा बारेन दिनार 1 को खरीदार 404 रुपया 72 पैसा बिक्रीदार 406 रुपया 31 पैसा र अन्तमा ओमानी रियाल 1 को खरीदार 396 रुपया 33 पैसा बिक्रीदार 397 रुपया 89 पैसा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर अब हामी गीत सुन्छौँ स्वप्न सुमनको बादशाह भयो